आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्रा. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी. तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्रा.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. Listen first to a tabla recital in Teen Taal. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying him on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to the tabla in Teen Taal. Our artist, Pandit Sohan Lal Mishra.

Tug the dog,

ಕಡಗಡ.

Tada.

0: आपके साथ हारमोनियम पर थे सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुदीप कुमार घोष। आपके साथ तबले पर हैं सौम्यदीप मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुदीप कुमार घोष।
1: You were listening to a tabla recital in Teen Taal. Our artist was Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a santoor recital. Listen to the santoor in the rag Ahir Bhairav. Our artist is Sudeep Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla is Shomodeep Mukhopadhyay. Listen now to the santoor in the rag Ahir Bhairav. Our artist, Sudeep Kumar Ghosh.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिर भैरव पर संतूर वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुदीप कुमार घोष। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सौम्योदीप मुखोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a संतूर recital in the राग आहिर भैरव। Our artist was Sudeep Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla was Shomodeep Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

आलाप जोड़ झाला के पश्चात विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सितार एंड सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित पुष्पराज कोष्टी। लिसन राग सरस्वती ऑन सितार, आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

यह था सितार पर राग सरस्वती। तबले पर लत कर रहे थे भूषण परचुरे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पुष्पराज कोष्टी अब सुरबहार पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग खमाज। लीजिए सुन आलाप जोड़ झाला, गत चौताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग सरस्वती ऑन सितार, अकंपनीड ऑन तबला भूषण परचुरे। कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम पंडित पुष्पराज कोष्टी प्रेजेंट्स राग खमाज ऑन सुरबहार। आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय गत सेट टू चौताल।

0: आप सुन रहे थे सुरबहार पर राग खमाज। पखावज पर संगत कर रहे थे विवेकानंद कुरांगले। इसी के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पुष्पराज गोष्ठी का सितार और सुरबहार दिन संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू आर लिसनिंग खमाज ऑन सुरबहार, accompanying him on Pakhavaj, Vivekanand Kurangale. With that, we conclude Sitar and Surbahar recital by Pandit Pushparaj Koshti. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं कल नाही पावे, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Pandit Madhup Mudgal. He first presents Rag Bhatiyar, in which he will present a Bada Khayal set to Vilambit Ektal. The lyrics are Kala Nahi Pave. This will be followed by a Chota Khayal set to Drut Tintal. The lyrics are Din Gaye Beet Sukh Ke. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घूंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद राग बिलास खानी तोड़ी इन विच ही प्रेजेंट्स द बड़ा ख्याल। द लिरिक्स आर नीके घूंघरिया। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल। द लिरिक्स आर नीके नीके शोभा देखत।

0: अभी आप पंडित मधुक मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुक मुद्गल। He was accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विभव नागेशकर का तबला वादन. प्रस्तुत है ताल तीन ताल. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय विभव नागेशकर. ही प्रेजेंट्स ताल तीन ताल.

धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक टक टक धातृक धे टक

ये था तीन ताल। आप सुन रहे हैं विभव नागेशकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगत कर रहे हैं विनोद पड़गे। विभव नागेशकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल झपताल। दैट वॉज ताल तीन ताल। यू आर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय विभव नागेशकर। ही इज अकंपनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय विनोद पड़गे। विभव नागेशकर नाउ प्रेजेंट्स ताल झपताल।

ये था ताल झपताल। विभव नाशकर अपने तबला वादन का समापन ताल धमार से कर रहे हैं। दैट वॉज ताल झपताल। विभव नागेशकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसिटल।

ये था ताल धमार। आप सुन रहे थे विपुल नागेशकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे विनोद पड़गे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है राग डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल धमार। यू वर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय विभव नागेशकर। ही वॉज अकम्पनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय विनोद पड़गे। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी, तदुपरांत काफी दादरा सुनवाएंगे. कलाकार हैं अंजना नाथ. आपके साथ तबले पर हैं औसित कुमार जाना और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी, तदुपरांत काफी दादरा. कलाकार हैं अंजना नाथ.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen first to Khambaj Thumri, followed by Khafi Dadra. Our artist is Anjana Nath. Accompanying our artist on the tabla is Oshit Kumar Jana, and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to Khambaj Thumri and Khafi Dadra, our artist Anjana Nath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी सुन रहे थे, तदुपरांत काफी दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे अंजना नाथ। आपके साथ तबले पर थे औसित कुमार जाना और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं सुधेंदु हालदार। आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता।
1: You were listening to Khambaj Thumri and Khafi Dadra. Our artist was Anjana Nath. Accompanying our artist on the tabla was Oshit Kumar Jana and on the harmonium was Debashish Odhikari. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Sarangi recital. Listen to a Sarangi recital in the rag Bageshri. Our artist is Shudhendu Haldar. Accompanying our artist on the tabla is Joy Dasgupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाग्यश्री पर सारंगी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुधेंदु हालदार, आपके साथ तबले पर थे जॉयदास गुप्ता। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarangi recital in the rag Bageshri. Our artist was Shudhendu Haldar. Accompanying our artist on the tabla was Joy Das Gupta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाषा मिश्रा का वायलिन वादन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी. मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा.

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। विलंबित रचना तीन ताल और द्रुत रचना झप ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। सुभाषा मिश्रा अपने कार्यक्रम का समापन वायलिन पर बजाए राग मिश्र भैरवी से कर रही हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग मिश्र भैरवी, तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्र. राग है यमनी बिलावल. इसमें आपने आलाप जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत की हैं जो क्रमशः रूपक एवं तीन ताल में निबद्ध हैं. आपके साथ तबले पर संगत की है उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ने. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र. The rendition commences with the rag Yamini Bilawal, in which he renders two compositions set to Vilambit Rupak Tal and Dhrutgat in Teen Tal. The accompanying artist is Ustad Ismail Daddu Khan on the tabla.

अभी आप सुन रहे थे राग यमनी बिलावल। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग जयंत मल्हार। विलंबित तथा द्रुत दोनों गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग जयंत मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में राग जयंत मल्हार। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। तबले के साथ संगत कर रहे थे पंडित यदुनंदन गोस्वामी। हर पल हर समय DTH रागम के लिए ये थी आकाशवाणी भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित विश्वनाथ का गाया राग गुर्जरी तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं काहे बजावत बीन और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं बन के पंछी भय बावरी. तबले पर आपकी संगति की है मनोज नागर ने और हारमोनियम पर अदिति नाथ ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present a vocal rendition by Pandit Vishwanath. He is accompanied by Manoj Nagar on tabla and Aditi Nath on harmonium. First listen to Rag Gurjari Todi. The Vilambit Gat is said to Ektal. The words are Kahe Bajavat Bin. And Drut Gat is said to Teen Tal. The words are Banke Panchi Bhay Bavre.

Sagarega,

Sagarega,

0: पंडित विश्वनाथ का गाया राग गुर्जरी तोड़ी अभी आप सुन रहे थी। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग नट भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं सुमिरन तोरा, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं करम की नजर राखो।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग गुर्जरी तोड़ी बाय पंडित विश्वनाथ। नाउ लिसन टू राग नट भैरव। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल। द वर्ड्स आर सुमिरन तोरा। द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल। द वर्ड्स आर करम की नजर राखो।

0: अभी आप पंडित विश्वनाथ का गाया राग नटभैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी मनोज नागर ने और हारमोनियम पर अदिति नाथ ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडेशन इन राग नटभैरव बाय पंडित विश्वनाथ। ही वाज अकंपनीड बाय मनोज नागर ऑन तबला एंड अदिति नाथ ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH, Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलन और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा वर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

जय श्री बथीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओमकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।